हे मेरे प्यारे प्रभु, जे मैं तेरी भगती करना वा, तेरे कोल आउंदिया भी मैं अपनी नीवी पा के जबान नू रोक के रखना है, जे तेरे कोलो भी मंगदिया लज्जा करनी है ते दस मैं मुंह खोल के किदे दर तू मंगा। माधो कैसी बनो बने तुम संगे, आप ना देखो ता लेवो मंगे, हुण मंगदे की ने, तृष्णा वाली मंगनी गुरमुखो, सिर्फ एक दिन नू चलान वास्ते खुराक है, दो सिर मांगू चूना पाओ की हो संग लूना, पाओ दा अखरी अर्थ पाना नहीं, इत्थे पाओ दा अर्थ पाइया, एक किलो दा चौथा हिस्सा। कहन लगे दो सिर मांगू चूना पाओ की हो संग लूना, अध सिर मांगू दाले मोको दोनों वक्त जिवाले, खाट मांगू चौप आई सिरहाना अवर तलाई, ऊपर को मांगू खींदा पर कासली सौन लई नहीं। गुरमुखो कहन लगे खुराक इस करके मंगी है, मैं जीना चाहना वा ते जीना मैं इस करके चाहना वा तेरी बंदगी कर सका। साहब दे बचना ने सानू अंदर नू अरदास करन दी जुग दसी है, शब्द वरते खाट मांगू चौपाई सिरहाना अवर तलाई, ऊपर को मांगू खींदा तेरी भगत करे जन थींदा, पेच के भगती कर सका। बाबा धन्ना जी का बचन असी पढ़ने के गोपाल तेरा आरता, पर यह गल कदी ना भुलिए अगली तुक भगत जी ने कमाई है, ओ तुक है जो जन तुमरी भगत करंते तिन के काज सुमारता, पर जो जन तुमरी भगत करंते, कहन लगे तेरी भगत करूं जन थींदा, ये दो शब्द कदी भुलिए ना, ओ मंग विचो भी रब दी भगती पे मंगदे ने। हां गुरु अर्जुन साहब जी ने एक बचन कहा है, गुरु ग्रंथ साहब जी का राग कानड़ा है, ये शब्द आरंभ हुंदा है जन को प्रभ संगे असने, अगला बचन है साजनो तू मीत मेरा, पर पहली तो कदी ना भुलिए जन नू प्रभु दे चरणा नाल प्रेम है। कहन लगे सजना हे मेरे मित्र परमात्मा, जितनी देर तक तेरे घर विच नहीं आया, एवें समझदा सां लोकां दी आस रख के, जिद्दन दे सजना तू अपने बूवे खोल दिते, एक गल दी समझ पै गई इस सज्जन दे घर किसी चीज दी कमी नहीं, तेरा सज्जन इन्ना धनाड है इन्ना रहमतां दा दाता ओ बख्शंद है, ते फिर तेनू किसे दर दी मुथाजी क्यों। फिर सतगुरु पता मंगदे की ने, कहन लगे हे प्रभु पंजां तत्तां विच विचरदा मनुख है, इत्थे दिहाड़ी करन वाला भी चंद है, भावे ओ मजदूरी करके पेट भरदा है पर मेरी इज्जत जरूर होवे, इत्थे कमजोर बंदा भी चंद है मेरियां बाहां विच बल होवे, जिस दिन इज्जत दी लोड़ पई तेरे दर ते आ के बेनती करके मंगांगा, ताकत दी लोड़ पई तां तेरे दर तों मंगांगा, जे धन दी जरूरत पई तां मैं अरदास करांगा, जे मैनूं पुत्तर दी लोड़ पई पुत्तर लई बेनती करांगा, ते जिस दिन मेरा तन रोगी हो गया मैं उदन भी चरण तेरे पकड़ांगा, क्योंकि मेरे सज्जना मैनूं समझ पै गई कि तेरे घर अंदर किसी चीज की कमी है। यह भी अरदास दा नमूना है कि जन को प्रभ संगे असने, साजनो तू मीत मेरा ग्रह तेरा सबके, मान मांगू, पर इत्थे मान दा अर्थ इज्जत है, हालांकि बाणी विच सिख वचन पढ़ने आ साधो मन का मान त्यागो, गुरु तेग बहादुर कह रहे ने मान त्याग दे, ते गुरु अर्जुन साहब कहिंदे ने मैं मान मांगू, मान दा अखरी अर्थ है समाज विच जीण लई मैनू इज्जत चाहीदी है, मान मांगू आन मांगू ताकत चाहीदी है, धन लक्ष्मी सुत दे, इथे देह दा अर्थ देना नहीं। बाणी दे ज्ञाते सज्जन जानते ने देह शब्द तीन रूप विच बाणी विच आया है, ददे नू लां ते खा हा मुक्ता, देह ददे नू लां खाहे नू सिहारी, देह एक बचन पढ़ने ददे नू लां ते खा हा औंकड़, कनोड़ा नी खोड़ा नी बन देना, देह आपां ही बचन पढ़ने आ कि देह शब्द जोड़ा इथे आया है इहदा अर्थ देना नहीं, मान मांगू तान मांगू धन लक्ष्मी सोत दे, ददे नू ला तिहा मुक्ता है, एदा अर्थ हे प्रभु जे तन नू रोग लग गया ते मेरे शरीर दी अरोगता भी मेनू तेरे दर तो मिलनी, एदा मतलब ए तू अरदास कर सकने, हुण सारी जिंदगी मान मंगी जाए तान मंगी जाए धन पुत्र मंगी जाए अरोगता मंगी जाए, एदा मतलब तेरी अरदास भी तब्दीली नहीं आई, जदों किते तेनू ए दाता मिल जांदियां ने फिर नेत्र बंद करके अंदर झाती मार के देख मेरे अंदर दी अवस्था की है, किते मेरे अंदर नू काम ता नहीं खांदा पिया, किते मेरे अंदर नू क्रोध तपांदा ते नहीं, किते मेरे अंदर नू बकार दिन रात अंदर दी पत ता नहीं लुटदे पए। फिर अरदास भी तब्दीली आउंदी है जिदन गुरु वाले पासे कोई जुड़दा है, फिर बेनती करके कहिंदा काम क्रोध लोभ झूठ निंदा।

निरपो निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैपं गुरप्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक

नानक होशी की सच तुमरे गुण क्या कहा मेरे सतगुरा जब गुर बोले तब विषम हुए जाए।

जो हमारी बेद होती मेरे सतगुरा साबिद तुम्हार जानो हो आपे हम रुड़ते फिरते कोई बात ना पूछता।

गुरु अर्जुन विघ्न के नाशक, विघ्न के नाशक, श्री हर गोविंद शुभ सुमत प्रकाशक, श्री हर राय नमो कर जोरी, नमो कर जोरी, गुरु हर कृष्ण मनावो बहोरी।

0: बरा से हर गोविंद चंद को बोलन हर दुहारे सुन चंदू चिंतायत अनक उपाओ विचार चौवे
1: वाहगुरु जी का खालसा वाहगुरु जी की फतेह। परम सन्मान योग साहिब सतगुरु

अगे संतां नूं प्रचार कीता। उदू अगे इसे प्रकार तरीके चलदे बाबा चंदा सिंह जी ज्ञानी होए, उन्हां गुरु

लाहौर आ गया। लाहौर आके ने लुटी लाहौर। इतने हूं लाहौर के दो हाकम बदलने ने, शायद हूं तक तुम पता होना चाहिए भी हूं तक जेडे इतने हाकम ने ना वह शाह नवाज दीवान कौड़ा मल वह दोवे ने, पर हूं बदलने ने। मैं हजे थोड़े न सांझ नहीं पानी उन्होंने नावों की, कितने खिलारा ना पै जाए। हूं इतने शाह नवाज है जेड़ा, वो पहला तो इनू आपे सदा दिंदा है, फिर वह दिल्ली हाकमा तो डर गया भी कितने मेरे नाल बुरी ना करन, इसलिए वह जाके अगे अबदाली दियां फौजां मिलता है। तो जदों अगे अबदाली दियां फौजां मिलता है वह लड़ाई होंदी है, उहदे विच शाह नवाज है जेड़ा भज के वह भी दिल्ली चला गया, लाहौर खाली हो गई। जदों लाहौर खाली हुई इन्हें आके अहमद शाह अबदाली ने पहला जेड़ा आके टिकाणा कीता और लाहौर कीता। लाहौर पाकिस्तान विच है अजकल, उस वेले नहीं सी। जदों आके ने दिल इत्थे लाहौर विच टिकाणा कीता, इह उत्थे पंज हफ्ते रहा। 10 जनवरी नूं आया होया 1748 नूं, 18 फरवरी 1748 तक इह उत्थे ही रहा लाहौर विच। इन्हें रज के लाहौर लुट्टी और इन्हें उत्थे 30 लाख रुपया उस वेले इन्हें पैदा किया लाहौर की धरती विचों। शाह नवाज भज चुके हुए सी, होर कोई साधन नहीं सी। आखिर यह लाहौर तो तुरद, लाहौर तो तुरद, यह 18 फरवरी नूं उत्थों तुरद 1748, पांच हफ्ते रह के। ते जदों उत्थों तुरद हुण सिखां दा वास्ता पैण लगा है। मैं हैरान है जिन्हां कोल ना खाण लई भोजन है ना रहण लई कोई घर है, हथियार भी लुट लट के बेचारे पैदा करदे ने। इन्हां कोल हथियारां कोल फैक्ट्रियां दे विचों जाके हथियार रहण दा भी वक्त नहीं, ना कोई पैसा कोल, फिर भी रब जाने केड़ी गलों चढ़ती कला च रहिंदे सन। गुरु की बाणी पढ़नी, डिलौत बंधन अनक बार, सर्व कला समरत लोलन ते राखो प्रभु नानक दे कर हाथ। हर वक्त तू मेरो मेर पर्वत स्वामी, ओट गई मैं तेरी, ना तुम डोलो ना हम गिरते, रख लीनी हर मेरी, अब तब जब कब तू ही हम तो प्रसाद सुखी सदही, तेरे भरोसे रब दे चरणा में जुड़े रहना। हुण देखो अहमद शाह अबदाली जरा लुट लुट के सारियां नूं सिद्धे करदा हुंदा, शाह नवाज वर्गे भज गए। वह जदों 18 फरवरी नूं लाहौर तो चलिया ते आखिरकार 21-22 तरीक नूं इन्हें विचों आके, 21-22 तरीक नूं विचों सरहंद नूं भी आउंदा आया। 21-22 तरीक नूं यह करीब नूर दीन दी सरां, हुण नूर दीन दी सरां तो आप कई बार सुन लिया है ना, ते हुण मैं बेनती करा भी जदों वक्त मिलिया ते तरन तारण साहब दे बिल्कुल लागे है, हुण जाके आयो, बच्चों दिखा के लेके आयो। जब तुसी इंडिया जाते हो उत्थे जरूर दिखा के लेके आयो भी इत्थे बोझा सिंह गर्जर सिंह शहीद होए सी, इहो नूर दीन दी सरां है। उत्थे नूर दीन दी सरां दे कोल हालांकि अहमद शाह अबदाली आया ही है हजे, इनू उथे गुरु के सिखा ने रज के लुटिया। जेड़ा ए लाहौर तो लुट के लेके आया सी ना 30 लाख रुपया, उहदे विचों बहुता लुटिया ते कुछ एक घोड़े कुछ एक हथियार सारा कुछ लुट लुटा के गुरु के सिख, उन्हें पता लग गया हुणे चंगी नहीं गुजारेगा। वह सिख सन जेडे कला नौर गुरदासपुर के इलाके च, गुरदासपुर के इलाके च कला नौर ते दुआबा उहदे वल भज गए। अहमद शाह अबदाली उठो फिर तुरे है, यह पहला देख चुका होया सी क्योंकि 1739 विच नाल आया सी नादर शाह अबदाली ने, यह सारा कुछ हालात वेख चुका होया सी, इहनू सिखां दा कुछ ना कुछ पता सी। इथों अगे चलदा 25 फरवरी नूं इत्थे पहुंचदा सरहंद विच। सरहंद उदों बड़ा वड्डा शहर हुंदा सी, अज तां उजड़ गया, जिते बच्चे शहीद कीते ने असल विच ओह सरहंद है, अज उजड़ गया, फिर उजाड़ दिता सी बाबा बंदा सिंह बहादुर दे वेले, ओ वखरा बसिया गल वखरी है। इथों फिर दुबारे अहमद शाह अबदाली चलदा, ए 11 मार्च नूं 1748 विच आके दिल्ली हमला करदा। दिल्ली जदों आउंदा ते मोहम्मद शाह रंगीला तां याश सी, उहनूं ते पता ही कख नहीं, ते ओ जिहड़ा कमरुद्दीन सी उदों नमाज अदा कर रहा सी। जदों इन्हें पहला गोला दागिया, जदों अहमद शाह अबदाली ने पहला गोला दागिया,
ਉਦੋਂ ਉਹ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ